0: अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस।
1: ठीक है।

0: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।